0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हाँ त पोर्सालिक बास सम्झोट आम हिन्दो लक्टी र हडबरा पानी बस्दा बेर अस्तिम कहाँ र सिक्दा त सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम बद्दी ठिकम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारे बद्दी
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया ध्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले हाँ सावधानी अपनाई लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण कर सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: केपी पोली किन्नी घुरी गांव में काठमांडू बाट डॉक्टर आने बारे सूचना
5: यही असार पाँच गते शुक्रबार को दिन
4: पेट छाती सुगर प्रेसर थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनिया एवं पाइल फिसर फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह द्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच पीएफटी समेत गरिन्छ स्थान केपी पोली क्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया
6: तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैँ बाप सही।

0: La la la la la la la.
1: केपी पोली क्लिनिक भुरीगाउँमा काठमाडौँबाट डाक्टर आउने बारे सूचना.
2: यी असार 5 गते शुक्रबारको दिन
1: पेट, छाती, सुगर प्रेसर र थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनिया एवं पाइल फिसर फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाहद्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ. उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच पीएफटी समेत गरिन्छ. स्थान केपी पोली क्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया.
3: जीत पुरवाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए.
4: हाँ तब पतलिया याद करो तो जूटे राय लागत है. पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा. सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा.
3: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा.
5: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है. यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए. नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए. एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए. एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए. सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए. सर सफाई में ध्यान दिया जाए.
6: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश.
7: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैं बाट्छ.

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब पतलिए याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।